0: कश्या माता कश्या पिता कश्या भाई कश्या श्रीमती कश्या छोरा
1: छोरा
0: कसो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून से साथ श्रृंखली शिवशाला सुबह में की नारी कर चीन भारी विपत्ति पति से जाई विमति कर चिंका पिटाले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली हर बंकन कहीं ज्योति समना देव के सौगर मन देव चंगा कर मिलन चौधरी का हरिषित मुलाकात नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुठ गए तम्बु जमा कर दी सही तम्बु बली गए प्रयोजित पहुंचे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन्म बाला का ओ जन्म बाला का ओ जगमग करने मन चित्त हरने

0: ఇంట్రెస్ట్ నీ గడి మేరకు బాగులేదో తోడిన సగన తొయ్యి తోడు కొత్త
1: चाहे जेसू कहीं होस्त हम मित्र तलाई को सजे तोड़ सकते ना एक तु तीन
0: छे पारो छिन
1: चार पांच छ
0: हमरो दोस्ती छ
1: छ छ छ
0: हाम्रो दोस्ती छ
2: छ छ छ हाम्रो दोस्ती छ
3: बागबहादुर तलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्नु नपरोस्
0: मलाई कसैले माया गर्दैन।

0: लेखा परीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा, संचालक समितिको कार्य सम्पादन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल,
1: नयाँ संचालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन, निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तथा निर्णयहरू,
0: संस्थाको विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन सम्बन्धमा, साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न चेयर सदस्यको तर्फबाट प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने बारे र विविध
1: साधारण सभा हुने मिति र स्थानहरू। मिति 2083 साल असोज 8 गते, भीमेश्वर नगरपालिका 5 विसुनटोल। समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 8 गते भीमेश्वर नगरपालिका 5 घोकशिला। समय दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
0: असोज 9 गते सैलुङ सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 काटाकुटी बोर्डिङ। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 10 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गाउँपालिका आसपास। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
1: असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका 6 ढुङ्गे बजार बाघखोर। समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कालापानी। समय दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
0: असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 झोर मन गाउँ। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सरनथली। समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 42 42 75 17।
1: असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पाँडे खानी। समय बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भैँसे बजार। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
0: असोज 15 गते मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पौटी सभा हल। समय बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 30 77 72। असोज 15 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भित्रे भन्ज्याङ। समय बिहान 8 बजेदेखि मध्याह 12 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
1: असोज 17 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 महिला भवन। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 18 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वडा कार्यालय। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 40 68 24। र असोज 21 गते सैलुङ गाउँपालिका सह संस्थाको प्राङ्गण। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
0: साधारण सभामा उपस्थित चेयर सदस्यहरूलाई कर बाहेक रू 300 खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ। 2083 साल असार मसान्तसम्म नियमित बचत भएको ऋणको भाका ननागेको चेयर सदस्यज्यूहरूलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ। अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 48 28 75 55, 98 44 23 63 23, 98 45 75 88 88 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। रमेश बहादुर सुवेदी व्यवस्थापक श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 फस्कु दोलखा।
2: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: साधारण सभा हुने मिति 2083 साल असोज 29 गते। स्थान सिद्का माध्यमिक विद्यालय सुनखानी। समय बिहान 9 बजे। गोपाल पाण्डे अध्यक्ष। व्यवस्थापक जमुना बुढाथोकी। कोषाध्यक्ष कुमार बुढाथोकी। सचिव सुरज बुढाथोकी। श्री ढिक्का देवी ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कालिंचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सिद्का सुनखानी दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैठक थप्लो सात मेगाहर्ज मदि प्रसाद साहब को आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन् 2026 अक्टूबर 8 तारीख आश्विन 22 गते बिहीबार त्रयोदशी तिथि अब स्तुति गर आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

सारी छयाहुन राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाय नै परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस सुत सहित।

たり、しかじかなべるたつまいれ、じゃんつわるべがり。パピジャンパニラマカスマラナレ、サンサラパルタルチャタ。राम को इकामनी मित्त आउठी शंगली जान्छु दुताई हमता क्या डर छेरा समुद्र तर्न सहजाई पाउचान्छु लंका पनी

सहिता वायु शरी हुन गया हनुमन्त सहिता आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्की कन फेर रामचन्द्रका पासमा।

0: परमात्मा
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म एउटा शङ्ख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्मशान ननिलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिदक्ष बलिदक्ष यज्ञ